कॉलेज में सारे लोग जा भी नहीं सकते, यूनिवर्सिटी में सारे नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है कि जब वो बच्चे जो हैं जो मैट्रिक की तालीम हासिल करेंगे, जितना उनके पास बेसिक नॉलेज जो है वो अपनी इन जो हमारे राबर गुजरे हैं, हमारे जो ये लोग जो है वो बानी कौम हैं, बड़े बड़े हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं, जब इनकी इनके पास मालूम नहीं होगी तो वो ये लोग उनको मुतसर कार्य करें कैसे करेंगे। तो लमा साहब की मुख्तार जी शायरी छोटी मोटी नज़में वो बस जो है वो पहाड़ और गलहरी और इस तरीके से छोटी छोटी नज़में जो है जो एक दुआ जो है वो शामिल कर ली। फिर बड़ी मजे की बात यह है कि हम भी पढ़ते रहे हैं, फिर वो जो उस्ताद हैं हम भी इस फील्ड में रहे हैं, लेकिन उस्ताद ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अगर उस्ताद जिम्मेदारी भी करता और यही जवाब शिकवा है उन बच्चों को सही सिखा बांगे किताब देता, मैं समझता हूं एक दो चंद शेर जो है उनकी सही तशरी जो मकसद शायर का वो बयान कर देता, तो फिर भी इस कौम को आप मुख्तलिफ तरीके से पाते। बस न समझाने वाला और आगे समझने वाला कोई नहीं है, समझाने वाले भी खत्म हो गए, समझने वाला भी कोई नहीं है। एक होता है ना बंदा, चलो समझाने वाला एक नहीं मिला दूसरे वो तलाश करता है। पुराने बुजुर्गों को देखे ना जी कहां से कहां तक तलाश नहीं पहुंचे, और क्या कौम छोड़कर जिन बुजुर्गों के बारे में हम भाई वो बाबा शहर कुछ नहीं, आज तो ये हो रहा है ना, बाबा तो है कुछ नहीं, बाबा शहर कुछ नहीं। आज हम एक दूसरे के घर इसलिए जाते हैं किसी मकसद मतलब के लिए, कोई कौन है हमारा कोई काम होगा, लेकिन वो लोग थे वो इन्हें इस्लाम के लिए उन्होंने जिंदगी उनने जिंदगी किस लिए कि वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पर यानी इतने सफर किए। हदीस मुबारक गठी हो रही है जी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम हो रहा है, तालीम इल्म सीखा जा रहा है। क्या हम इतनी तकलीफ हम अपने आप पर बर्दाश्त कर सकते हैं, बल्कि आप असाब उन लोगों का करना शुरू कर असाब भी आपने की जरूरत है उन लोगों का उनके अल्लाह ताला को जो इज्जत तकरीम दी है तू उनके पर खा के बराबर नहीं पड़ता। आप साहब हमने अपना कम अपनी हमारी औलादें कहां पर खड़ी है, हमारी इज्जत क्या करना है। ये चीजें एक दो दिन चंद दिन के लिए चमक दमक जो है वो थोड़े दिनों के लिए होती है, लिहाजा आपको चमकाना है जो बिल्कुल तारीख हो चुका है। तो अलामा साहब की जो बात हम उसको लेकर चलेंगे, और अलामा साहब ही जो है बस वो बात वो थी कि ना हम समझ भी ना सके, बस वो ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा। पर ये है वो तराना मिली, ये मैंने कहा था कि 1905 के अंदर जो है उन्होंने तराना हिंदी लिखा, फिर इसके बाद जब वो अलग अलग को एक सोच पैदा हो गई कि वो दोनों मुल्क जो है इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर अलग अलग, तो फिर जो है वो ये 1910 के अंदर जो है ये तराना मिली बिल्कुल उसी वजन के मुताबिक लिखा जो तराना हिंदी लिखा था। लेकिन अब इंडिया के अंदर भी वो तराना हिंदी जो है वो लोग पढ़ते हैं, वो अपने मुल्क की जो है जब वो इज्जत की बात करते हैं तकरीम की बात, अपने वो तराना पढ़ते हैं। उन्हें ये नहीं किया कि तराना नकार दिया, क्यों कि वो लोग पढ़े लिखे उनको पता है कि ये बात जो है वो हमारे अल्लामा साहब को वो समझते थे। तो बरअल जो है वो यहाँ पर जो अल्लामा साहब की बात जो है वो ये थी कि चीनो अब हमारा हिंदुस्तान हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तो ईद की सीनों में आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, दुनिया के बुत में हम उसके पासबां हैं वो पासबां हमारा, तेगों के साये हम पक्कर जवां हुए हैं खंजर इलाल का है कौमी निशान हमारा। यहां तक हमने कोई बात की थी तो हम बस एक दो शेर आगे पढ़ते हैं, टाइम भी इतना नहीं है। तो फरमाया लम्हा साहब फरमाते हैं कि मगरब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, मगरब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से ले रवा हमारा, थमता न था किसी से ले रवा हमारा, बातल से दबने वाले
آسمان ہی ہم باطل سے

सो बार कर चुका है तू इम्तहान हमारा, ए गुलिस्ताने उंदलस वो दिन है याद तुझको, ए गुलिस्ताने उंदलस वो दिन है याद तुझको।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम

यकीनन आपको मजा आया होगा ये कवाली सुन के। और यकीनन कवाली जो होती है अक्सर उसमें, जैसा मैं उस दिन भी बता रहा था कि मैसेज होते हैं इसमें बड़े खूबसूरत, और बड़ा खूबसूरत जो है वो अंदाज में एक आखारी का एक अलग तरीकाकार होता है, जैसे कि गाने को गाना गा के उसमें जो है वो अपनी जो कैफियत है उसको बयान किया जाता है, इसी तरह कवाली के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ, सुनते हैं, इंजॉय कीजिए।

तमाम ही कलाम बड़े खूबसूरत होते हैं और आज की ये महफिल, और ये महफिल हर रोज होती है हमारी, और हमारा और आपका साथ दो घंटे होता है। दो घंटे में आपके लिए मुख्तलिफ कलाम आपके लिए पेश करते हैं, और अभी भी पहला कलाम अभी आपने सुना और आपको एक और कलाम खूबसूरत सुनाते हैं।

ब्रेक के बाद अब आपको मजीद क्वाली सुनाएंगे, कलाम सुनाएंगे, तो चलते हैं अगले कलाम की तरफ। लीजिए जनाब, सुन चुके आप ये कलाम। और क्या होता है कि अक्सर सभी कलाम आप जो शख्स सुन रहे हैं, हमें ये क्वाली स्पेशल है और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी। अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो आपको बताता चलूँ, अक्सर क्या होता है कि जो बाज़ुकात एक के बाद फिर दूसरा कलाम ऑटोमेटिकली चल पड़ता है, तो इसलिए फिर क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है तो इंजॉय किया करें आप। और अभी चलते हैं, सुनाते हैं आपको मजीद भी। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे होंगे सुबह सवेरे।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info at linkfm.com.

0: on 96.7 FM, online, on smartphone and tablet, this is Link FM.
1: करम तेरा के बेजौहर नहीं मैं, गुलाम तोरल संजर नहीं मैं, जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं।

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक FM Sheffield।
2: ओ की यार, इन्हें भूड़ आशक भी कुछ नहीं हो सकता, जो देखो कितने ना कितने लगी रहते।
3: ओ भूड़ आशक, तेरा मतलब की है कहने का? चल चल

0: is Link Link FM.
1: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
2: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
1: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ. Buy your tickets at Eventbrite. Ya phir Chaudhary Kramal se 07754132576. That's 07754132576. Aana mat bhuliyega. 15 September 6:30 PM Arud Banqueting Suite, Sheffield. S47WZ. Gulab Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam.
3: The future is already here. We play your favorite music every day. 96.7
4: Link FM.

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: चाहत की मंजिल
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: दिस इज लिंक एफएम।
4: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब।
5: माया पर देश दिया, ओ माया पर देश दिया, दिया।
4: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ। Buy your tickets at Eventbrite या फिर चौधरी क्रामल से 07-54-132-576। That's 07-54-132-576। आना मत भूलिएगा 15 September 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ। गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम।
6: The voice of the communities, 96.7 Link FM.
7: Link FM.

0: दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब।
3: माया पर देश दिया, ओ माया पर देश दिया,
2: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15 सितंबर 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ। Buy your tickets at Eventbrite या फिर चौधरी करामत से 07-54-132-576। That's 07-54-132-576। आना मत भूलिएगा 15 सितंबर 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ। गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम।

0: Link FM Sheffield.
1: Link FM.
2: एस्केप पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
3: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
2: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ Buy your tickets at Eventbrite Ya phir Chaudhary Kramal se 07-54-132-576 That's 07-54-132-576 Aana mat bhuliyega 15 September 6:30 PM Arud Banqueting Suite Sheffield S47WZ Gulab Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam
4: My name is Shireen.
5: My name is Abdul Rahman.
6: My name is Sai Mudassir.
7: This is Rahul.
8: My name is Rizwan Ishwak.
9: My name is Asham.
10: My name is Azan Mudassir.
11: This is Ariba and you are listening to Link FM.

कुछ मुस्कानें पूरी जिंदगी का सुकून बन जाती हैं। जब पहली बार तुम्हें देखा तो लगा जैसे रात ने चांद को जमीन पर उतार दिया हो। उस पल से मेरी हर सुबह और हर रात बस तुम्हारे नाम हो गई।

इश्क का सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब कोई तुम्हें देखकर मुस्कुराए और तुम्हारा दिल खामोश होकर हाँ कह दे।

0: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
1: एस्केप पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
2: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
1: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th सितंबर 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ. Buy your tickets at Eventbrite. Ya phir Chaudhary Kramal se 07754132576. That's 07754132576. Aana mat bhuliyega. 15 September, 6:30 PM, Aruj Banqueting Suite, Sheffield. S47WZ. Gulab, Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam.

0: एस के पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
1: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
0: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ buy your tickets at Eventbrite या फिर चौधरी क्रामल से 07-54-132-576 that's 07-54-132-576 आना मत भूलिएगा 15 September 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम
2: Sheffield's Link FM.
3: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तिखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक FM 96.7 बहुत मजा है सीने
2: SK पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
3: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
2: और फराह खान हमरा Folk singer Munir Ahmed Chaudhary on Tuesday, 15th September, 6:30 p.m. at Arud Banqueting Suites, Sheffield, S47WZ. Buy your tickets at Eventbrite. Ya phir Chaudhary Kramal se 07-54-132-576. That's 07-54-132-576. Aana mat bhuliyega. 15 September, 6:30 p.m. Arud Banqueting Suite, Sheffield, S47WZ. Gulab, Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam.
4: Linking communities, thinking positive. This is your local community radio station, Sheffield's Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। आबदा परवीन जी की आवाज़ में आपने हकीम नासिर जी की गज़ल सुनी। तो चलिए अब हुमैरा चन्ना जी की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल सुनते हैं।

जी सामिन, ब्रेक के बाद एक बार फिर गीतों की महफिल लेकर हाजिर हूँ। आज ये मेरे सामने एक मैसेज पड़ा है, एक म्यूज़िक शो हो रहा है अरूज बैंकेट सोइट में, जो कि अटकलिफ रोड पर है। तो ये गाने वाली जो हैं ये वॉइस ऑफ पंजाब कहलाती हैं, गुलाब जी। बहुत अच्छे और बहुत ही पंजाबी गाने बहुत ही अच्छे गाती हैं, और इनका साथ देंगी फराह खान जी भी हैं, जिनकी आवाज़ नूर जहाँ जी से बहुत मिलती है। और इसके अलावा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी जी भी आ रहे हैं। ये आज है ये शो 7:30 बजे, तो आप ज़रूर जाइएगा और ये म्यूज़िक शो एंजॉय कीजिएगा। तो इनका मैं गाना भी लगाऊंगी जब मेरा ये पंजाबी का सेगमेंट आएगा ना थोड़ी देर बाद, तो फिर मैं इनका गाना भी आपको सुनाती हूँ। तो चलिए अब सुनते हैं एक दो गाना। आवाज़ें हैं मेहंदी हसन जी और रूना लैला जी की।

0: जी सामिन, गुलाब जी की आवाज़ में आपने गीत सुना। बहुत ही प्यारी अच्छी आवाज़ है इनकी, तो आप ज़रूर जाइएगा इसको देखने के लिए। ये शो हो रहा है जो आज मैंने आपको बताया अरूज में हो रहा है, आज 7:30 बजे। तो चलिए एक और गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम है चनवीर।
1: असलम अच्छा लगे तो लेता ही।

0: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
1: Escape पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
2: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
1: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ Buy your tickets at Eventbrite Ya phir Chaudhary Kramal se 07-54-132-576 That's 07-54-132-576 Aana mat bhuliyega 15 September 6:30 PM Arud Banqueting Suite Sheffield S47WZ Gulab Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam

ओए होए होए होए होए यार, इसकी तो सारी बातों से लग रहा है बड़ी टेंशन है इश्क, और इतनी टेंशन के लिए भी इसने गाना गा लिया। कौन लोग हो तुसी यार, इतनी टेंशन इसने सिवाय बुराइयों के इश्क की कुछ और नहीं किया यार। इश्क में नींद ना आए, इश्क में पानी पीने का दिल ना चाहे, रात को सोना ना चाहे, सुबह उठ के रोटी शोटी पराठा शराठा खाने का दिल ना हो, ये किस किस्म का इश्क है भाई। और मुझे तो एतराज़ भी नहीं है कि भाई अगर वाकई चलो इश्क में होता होगा, इतनी तकलीफ होती होंगी, लेकिन इन तकलीफों के ऊपर आपने गाना बना दिया यार।

मैंने कहा चलते फिरते मेरा टाइम पूरा हो जाए, अगले ने लिख दिया आमीन। कौन लोग हो तुसी, इन्हें बहुत जल्दी है मेरे जाने की भाई, मेरी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है भाई, पता नहीं यार मैं क्या कर रहा हूं भाई इन लोगों के लिए। चलें जी, स्टूडियो नंबर इज ऑडिबल ऑन 4261-8181 एंड व्हाट्सएप 07939-849-339 And if you are driving, I'm not expecting you to message me. Just give me a missed call.

अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया, मैं हूं जवाद जंजुआ. अ वेरी वार्म वेलकम, और खास तौर पर वेलकम करते हैं मोहसिन भाई को. मोहसिन भाई कहीं घूम गए थे, कोई नाराजगी थी. मोहसिन भाई खैर हो, एक बहुत अरसे के बाद आपने मैसेज किया. उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खैरियत से रखे. आबिद भाई ने भी मुझे फोन किया था, आबिद रजौरी साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भाई हैं, और वो भी मेरे से इत्तफाक कर रहे थे. यार इतनी टेंशन इश्क और साथ में मैनू कह रहे से, तुसी समझ गई होगी. कैसे मैंने पराठे का जिक्र किया, मेरे भाई का पराठा खाने को दिल आ गया. ये मैं पूछना भूल गया कि कौन सा वाला पराठा, नॉर्मल पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा. आप यकीनन ज्यादा भूख लग गई. And keep sending your WhatsApp messages. Our WhatsApp number is 07939849339. 12 people are listening online. So why don't you message me also if you are listening? वैसे I'll be very honest with you. I'm gonna play one track. इसकी फरमाइश आई है. कभी कभार तो ठीक लगता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही आजकल, आपको पता है जो नए टाइप के ट्रैक्स आ रहे हैं ना, ये सारे सेम के सेम ही लग रहे हैं. सेम टू सेम. मुबारक हो जी, मुबारक हो जिसने इस ट्रैक की फरमाइश की है. वो कह रहे हैं एक तेरा प्यार मैनू मिलिया. मुबारक हो, इन्हें कुछ मिल गया जी. अगर आपको भी एक तेरा प्यार मिल गया तो मुबारक हो. बड़े कम ऐसे लोग हैं जिन्हों एक प्यार मिल गया तो फिर वो कहते हैं कि दुनिया से और की लेना, लेकिन तुसी ले लियो.

जी वे एक तेरा प्यार। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं जी, कह रहे हैं थैंक्स के हमने प्ले किया ट्रैक। थैंक्स कि जी आपने इस ट्रैक की फरमाइश की और ये जान के खुशी हुई कि एक तेरा प्यार मिल गया आपको।

4:44 हो रहे हैं जी इस वक्त. अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया, आप वेरी वार्म वेलकम. इफ यू आर गोइंग होम और मे बी जस्ट फिनिश वर्क और मे बी स्टार्टिंग वर्क एंड यू आर लिसनिंग टू लिंक FM, अ वेरी वार्म वेलकम. वेलकम टू लिंक FM's फैमिली. अपनी एज बता रहे हैं लोग, मुझे क्यों बता रहे हो भाई, मुझे किसी एज में कोई इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा 440, जिस वक्त मैंने कहा था मेरे शब्द निकल रहे थे उस वक्त 44 था, लेकिन एक एक पॉइंट पे नजर रखी हुई है कि मैंने 44 बोला है या मैंने 45 बोला है. जो मेरी अच्छी बातें हैं, जो मेरे अच्छी काम है, वो याद नहीं रहते, लेकिन खाली इन्होंने मेरी गलतियों को पकड़ना है, जबकि मैंने गलती की ही नहीं. ये और बात है कि जब मैं गलती नहीं करता, मुझे ऐसी गलतियों की आमतौर पर सजा मिलती है और मेरी गलतियों को नोट बड़ा ज्यादा किया जाता है, मेरी अच्छाइयों को कम, मेरी गलतियों को ज्यादा नोट किया जाता है. फिर कहते हैं कि मैं बातें बड़ी करता हूँ. जैनब ने ज्वाइन कर लिया. कर्नल जैनब रिपोर्टिंग टू ड्यूटी. वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू?

एक नए ट्रैक की तरफ चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, मेरे टाइप का शायद। ड्राइविंग मैं क्या और तुसी करना की है, ये बात तो अब हमें भी पता चल गई। आई एम ड्राइविंग हियर, ड्राइविंग द डेस्क एंड यू गाइज आर ड्राइविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो हैव अ सेफ जर्नी, एंजॉय योर ड्राइव एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माई ड्राइव। तू फिर मिले, तू फिर मिले।

तुम फिर मिले। This is Link FM 96.7 FM और Link FM पर तुम फिर मिले। Link FM से यार। और जी मैसेज आया कि स्वीट ट्रैक नहीं जी, आप सुनो एक तेरा प्यार, ये वाला हमारे टाइप का म्यूजिक है।

What do you think? What do I think? प्ले करके चक्कर लगाते हैं, आप ही सुने, आप ही बताएं। दिस ट्रैक जो था, ये ट्रैक था नेटफ्लिक्स पे, एक सीरीज है मुसाफिर कैफे, अगर मुझे नहीं पता आपने देखी है कि नहीं। ओनली 8 एपिसोड्स हैं शायद, उसका ये ट्रैक था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। I've got some new, brand new songs, which I will be playing. Let's play another one. And then I will be going for a commercial break. So stay tuned, don't go anywhere. And keep sending your WhatsApp messages on 07939849339.

you. Welcome back after the commercial break. दुखी इंसान, ये कुछ लोग हैं दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाह रहे हैं, ये नहीं पता कि इस दुखी इंसानियत के अंदर बहुत दुख है। ऐसा ना हो कि दुखी इंसानियत की खिदमत करते करते खुद दुखों में डूब जाएं। और आई विल टेल यू वन थिंग, छक्का मारूंगा ग्राउंड से बाहर जाएगी, जो पार्किंग में बॉल गाड़ी खड़ी है उसका शीशा टूटेगा। आमतौर पर दुखी इंसानियत की खिदमत करने का हौसला उन लोगों में होता है जो खुद बहुत दुखी होते हैं। छक्का लगा कि नहीं लगा? 10 मिनट। बहुत दुख है, बहुत दुख है, संभाल ही नहीं जा रहा। आपको मेरे खुश होने से नजर नहीं आ रहा? नहीं दुखी यार, कौन लोग है यार ये आधे आधे जो मैसेजेस कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आते। लेट्स प्ले अ ब्रांड न्यू ट्रैक, हानिया आमिर का। एंजॉय द ट्रैक।

0: जो डर गया समझो मर गया,
1: जो डर गया वो मर गया। और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रैक भी आपने एंजॉय किया होगा। हानिया आमिर का ये ट्रैक था। और कीप सेंडिंग योर व्हाट्सएप मैसेजेस ऑन 0793984939। अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया, मैं हूं जवाद जंजुआ एंड दिस इज ड्राइव टाइम शो। आई होप यू आर एंजॉयिंग योर जर्नी। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू प्ले न्यू ट्रैक्स। और नहीं जी, मैंने किसी से ये सवाल नहीं किया कि आपने मुसाफिर कैफे देखा है या नहीं देखा। नहीं देखा होगा भाई, देखने की जरूरत भी नहीं है। और दुखी इंसानियत की बात हो रही है, आप समझते हैं कि यहाँ दुख बहुत है। दुनिया में कितना दुख है यार। कभी आपने ये सोचा कि आपके अंदर जितना दुख है, कोई दुनिया का कोई बंदा वो दुख दूर कर सकता है? आपस की बात है वैसे, मजाक से हट के। डू यू रियली थिंक कि कोई आपका दुख दूर कर सकता है? बताइएगा जरूर 0793984939। क्योंकि मैं समझता हूं हर बंदे के पास अपना बड़ा दुख है। और अब वो जमाने चले गए, अब वो जमाने चले गए, आप अपना दुख किसी से शेयर करें ना, तो अगला बंदा पता क्या कहेगा? आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए करम कुछ देर बात करें। आजकल पता क्या जमाना है? हा हा हा हा ही हु। अगर आप ये करते रहे फिर आप को लोग समझेंगे यार बड़ा ठीक बंदा, सेट बंदा। लेट्स प्ले अनदर ट्रैक एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। हा हा हा
0: हानिया मेरी जान।

जी तबाही ने तबाही मचा दी है जी। और एक मैसेज आया, ये ट्रैक नहीं अच्छा। भाई नहीं अच्छा तो कोई गल नहीं, आपका जो ट्रैक आपने बोला था, फरमाइश की थी कि वो हमें नहीं अच्छा लगा था, वो आपने कौन सा था, एक वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, ठीक है, वो ओरिजिनल वाला ठीक था, ये वाला तो दो नंबर था, यानी कि आपको पता है, समझ रहे ना, ये ट्रैक ठीक नहीं था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो लगाया था और सुनना भी पड़ा था मुझे मजबूरी में। तो अगर आपको ये वाला नहीं अच्छा लगा, हो सकता है किसी और को अच्छा लगे, और सिर्फ आप ही तो नहीं यहाँ पे प्रोग्राम सुन रहे ना भाई, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सबके बारे में सोचा करो। यार मेरी गाड़ी के ऊपर किसने नजर रखी है भाई, ये देखो यार, लोगों ने मेरी गाड़ी के ऊपर भी नजर रखी है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अपनी आंखों का इलाज कराएं। आज तो मैं गाड़ी में आया ही नहीं, मैं तो पैदल आया हूँ, छक्का मारा ना ग्राउंड से बाहर जाके पड़ी और गाड़ी का शीशा टूट गया। अच्छा, मेरी गाड़ी में, मेरे को ही बोल रहे हैं भाई, और मेरे से बात भी निकलवा ली कि आज मैं गाड़ी में आया हूँ कि पैदल आया हूँ। एक और ट्रक की तरफ चलते हैं, उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। सुकून है तू, क्या है तू, सुकून है तू, ये शादी से पहले का ट्रैक है शायद।

जी सुकून है तू, सुकून है तू, और वो सारे गायब हो गए यार। ये सुकून वाले भी गायब हो गए, मोहसिन भाई खाली जीजी कर रहे हैं। जीजी मैं क्या, खैर हो मोहसिन भाई।

0: This is Link FM 96.7 FM and this is Drive Time Show. समझो ना. और मोहसिन भाई ने हमें बहुत सारी दुआएं भेजी हैं. मोहसिन भाई आप भी सदा खुश रहें, सलामत रहें.
1: तो समझो ना, सुन लो.
0: समझो ना और सुन लो ना. आज के जमाने में ना कोई समझना चाहता है और ना कोई सुनना चाहता है. क्या कहते हैं आप? आपका राइट बनता है कि आप इस बात से इत्तफाक ना करें. हो सकता है भाई आप ना करें यार. वाज अ नाइस ट्रैक यार. एक और ट्रैक की तरफ चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं.

0: Welcome back after the commercial break. That was our last commercial break.
1: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल.
2: जहाँ बातें बनते हैं, वही है Link FM. दिल से आपके साथ. Link FM.
0: एक होता है आपके साथ, कोई भी होता है आपके साथ, एक होता है दिल से आपके साथ. लिंक एफएम आपके साथ है दिल से. बड़ी बात है ना भाई, बड़ी बात है. बोलना बड़ा आसान है, लेकिन दिल से किसी के साथ होना बहुत मुश्किल है. और आपने ये कल्चर देसी वाली जो बात की है, मुझे दोनों से एतराज है भाई. मेरा इख्तलाफ दोनों से. यही वजह है, यही वजह है. लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम और आप जो काम कर सकते हैं वो करें. लेकिन आप लोगों को बदल नहीं सकते. अगर आप बदल नहीं सकते लोगों को, तो फिर क्या कर रहे हैं? अपने आप को भी बदलने की कोई जरूरत नहीं है भाई. जब हम किसी को इस वजह से सपोर्ट करें, इनकरेज करें, उसको आगे बढ़ने का मौका दें, उसकी तारीफ करें, सिर्फ इस बेस पर कि उस शख्स का ताल्लुक उसी पोस्ट कोड से है जहां से हमारा है, या वो उसी गांव से ताल्लुक रखता है जिस गांव से हम हैं, तो फिर हमने मेरिट की धज्जियां तो वैसे ही बिखेर दी. सपोर्ट हर उस शख्स को करना चाहिए जो मेरिट के ऊपर अच्छा काम कर रहा हो. यू हैव अ राइट टू डिसएग्री अगर समझते हैं कि अच्छा काम नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ इस बेस पे सपोर्ट करना. जैसे आपने ये डायलॉग बहुत सुना होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में ये डायलॉग बोला जाता था. कि अपने सटने ते छामा सटने. ये मैं राजा गाजी साहब से पूछूंगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन तो बड़ा आसान है कि अगर अपने हैं तो फिर सटने की है, यानी छामा सटने. क्योंकि उन्होंने पता होता है आजकल वेदर, आपको पता है बड़ा खराब है, तेज बारिशों का आया, तो वो कहेंगे चलो जी फ्लड में डूब जाए. What kind of example is this? कि अपने सट रहे थे छामा सट रहे. अगर अपने हो तो फिर सटे नहीं. लेकिन मैं समझता हूं, और हमें सबको, मुझे भी आपको भी, हम जिस भी फील्ड में, हमें हर उस शख्स को सपोर्ट करना चाहिए जो अच्छा काम कर रहा हो, जिस फील्ड में भी वो हो. इस बेस पे हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि जी वो इस वजह से कि जी वो मेरे वालदेन के जानने वाले थे, या रिश्तेदार थे, या फैमिली टर्म्स थे, या हम एक ही इलाके से, एक ही पोस्ट कोड से हमारा ताल्लुक है. नहीं, कोई काम अच्छा कर रहा हो, दिल खोल कर बोलें कि अच्छा कर रहा है. और अगर आप उसके काम से इख्तराफ करते हैं, तो आप उसे रابطہ करें, उसे बताएं कि यार आपकी इस बात से या इस काम से मैं इख्तराफ करता हूँ. लाइफ इज टू शॉर्ट. अगर हम किसी को नीचे ऊपर नहीं लेके जा सकते, तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी को भी नीचे गिराने की कोशिश करें. क्योंकि एक चीज बहुत मुश्किल से मुझे समझ में आई, बहुत मुश्किल से, और मेरे रब की मेहरबानी है कि उस रब ने मुझे इतनी मारें दी लोगों के जरिए कि फिर मुझे समझ आई. लेकिन समटाइम्स आपको शायद इसी तरीके से समझ आती है कि कोई शख्स भी किसी दूसरे शख्स को इज्जत नहीं दे सकता. हम कहते हैं ना कि यार फला मेरी बड़ी इज्जत करता है, फला मेरी इज्जत नहीं करता. मैंने, आपका हक है कि आप मुझसे इख्तलाफ करें, मैंने इस अपने तजर्बे से ये सीखा है कि वह तज्जु मन तशा वह तज़िल्लु मन तशा, यानी वो रब की ज़ात है जो किसी को भी इज्जत बख्शती है और किसी को भी जिल्लत बख्शती है. और अगर उस ज़ात ने किसी को इज्जत दी है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं भी उसकी इज्जत करूं, और आपका भी फ़र्ज बनता है कि उसकी इज्जत करें. लेकिन अगर कोई बुरे वक्त से गुजर रहा है या उनकी इज्जत नहीं है, तो भी हमें हक नहीं पहुंचता. कि हम किसी को भी नीचे लेकर आए या कोशिश करें अपने अमल से, अपनी जुबान से, या अपने तरीकों से, या अपनी साजिशों से. आपको पता ना, सम टाइम साजिशें भी हम करते हैं ना. तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे ये मौका दे, क्योंकि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे ये मौका दे कि अल्लाह मुझे कभी भी साजिशें ना करने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे कभी भी ऐसा मौका ना मिले कि मेरी वजह से, मेरी ज़ुबान, मेरे एक्शन की वजह से किसी को भी नुकसान पहुँचे. और हमें ये मौका दे अल्लाह तबारक व तआला, ये तौफीक दे कि हम हर उस शख्स को सपोर्ट कर सकें, हर उस शख्स के साथ खड़े हो सकें जो अच्छे काम कर रहा है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए. अली हैदर भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है, लगता है गाड़ी चला रहे हैं. बस जी क्या करूं, मेरा दुख नजर नहीं आ रहा किसी को. अब मैं क्या करूं, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, सबको दुख नजर आ रहा है, मदावा कोई नहीं कर रहा. एक ट्रैक की तरह चलते हैं, उस ट्रैक के उस पार मिलते हैं. ये वाला ट्रैक है भाई, दुखी ट्रैक है. मैंने कहा सारे अच्छे अच्छे ट्रैक लग गए भाई, अब थोड़ा दुखी, मैं दुखी हो रहा हूं तो इसलिए दुखी ट्रैक लगा दूं.

जी, और कहा गया कि वेरी नाइस ट्रैक, दुखी ट्रैक था, और इसको भी कह रहे हैं कि अच्छा ट्रैक था यार। कौन लोग हो तुसी, तुसी भी बड़े दुखी हो, ये कौन लोग हैं भाई? ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि वे एक तेरा प्यार सानू मिलिया। यार ये एक घंटे के अंदर दुखी ट्रैक पे आ गए भाई इसी तरह होता है भाई, इसी तरह आज के लाभ को पता ना, लोग टाइम जाया नहीं करते। जी अल्हम्दुलिल्लाह।

No doubt. Thank you for your message. आप कह रहे हैं कि अल्लाह इज द ओनली वली, अल्लाह ऑलवेज गिव यू होप एंड खुशी इन एन अनएक्सपेक्टेड वे. ट्रू, वेरी ट्रू. लेकिन जरूरी नहीं होता खुशी सब कुछ होती है. मेरी तो इसके बारे में भी लंबी थ्योरी है भाई. ये जो कहना ना कि मुझे खुशी मिली, यार आज के जमाने में अगर आपको सुकून मिला हुआ ना, बहुत है यार. अगर मैं, मुझे किसी की मोहताजी नहीं है ना, यानी मेरा रब मुझे दो वक्त की और अच्छी रोटी दे रहा है, सर के ऊपर रूफ दे रहा है, चलाने के लिए गाड़ी दे रहा है, सेहत तंदुरुस्ती दे रहा है, दैट इज मोर देन इनफ. क्योंकि मैं समझता हूं कि सबसे मुश्किल चीज अगर हो सकती है, अल्लाह ने कभी मुझे दी नहीं और अल्लाह वो मुझे दे भी नहीं, वो हो सकती है मोहताजी. तो हमें दुआ करनी चाहिए अपने लिए भी और सबके लिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें किसी की जो होता है ना, किसी पे हम वो ना करें, रिलाय ना करें. मेन चीज ये होती है कि सिर्फ उसके बारे में कि यार वही मुझे कुछ करके देगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई. कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता. जी जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ ना भाई. पता चले आपके पास बहुत बड़े घर हों, एक ही जगह पांच पांच हो, गाड़ियां आपकी इतनी हो कि आपकी गाड़ियों के खड़े होने की वजह से आपके आस पड़ोस के लोगों की गाड़ियां खड़ी ना हो सकें, और आप हर गाड़ी को अपनी विंडो के सामने खड़ा करके देखना चाह रहे हो, और साथ ही साथ आपने गाड़ियां रखी भी हो और फिर आपने गाड़ियां चलानी भी नहीं हो क्योंकि आप सिर्फ गाड़ी देखना चाह रहे हो, और रात को आप सोने के लिए जाएं और आपको नींद ही ना आती हो. क्यों? क्योंकि आपने किसी के साथ किसी की जिंदगी का या बाकी लोगों की जिंदगी के इतने बैंड बजाए हों कि अब आपको नींद ना आ रही हो. तो वो वाली खुशी खुशी नहीं है ना भाई. तो चीजें हों कम लेकिन जैसे ही जाएं आप सोने के लिए रात के 9 बजे, यानी 9 बजे मेरा टाइम है भाई, 9 बजे मेरा टाइम है, 10 बजे आधी रात है मेरे लिए, 10 बजे मैं किसी को फोन का जवाब नहीं देता, किसी को अपनी आंसर भी नहीं करता. मैसेज तो वैसे भी मुझे कोई नहीं करता, लेकिन 9 बजे आप सोने के लिए जाएं और अगले ही लम्हे आप गायब, यानी आप सो गए. यार ये कितनी खुशी की बात है यार, अल्हम्दुलिल्लाह ना. और कईयों को तो खुशी इस बात पे नहीं आ रही होती कि वो अपने डीपी लगा रहे होते हैं, डीपी चेंज करके यही चेक करते रहते हैं कि हमारी डीपी पे तस्वीर कैसी है, फिर वो चेंज करते हैं, फिर वो खत्म करते हैं, फिर वो लगाते हैं, फिर उतारते हैं, फिर वो फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक को अपलोड करेंगे, फिर टिकटॉक पे जाएंगे, वहां जाएंगे. वो इसी टेंशन में रात गुजर जाती है भाई उनकी. जब वो टाइम के ऊपर नजर जाती है तो पता चलता है आधी रात हो चुकी है भाई. वो वीडियो देख देख के टिकटॉक के ही खत्म नहीं होते. ये वाला काम मैं वीकेंड पे करता हूँ क्योंकि मुझे पता है वीकेंड पे मैंने कुछ और नहीं करना, तो चलो टाइम को किल कर लें. राइट आफ्टर द ड्राइव टाइम शो, राजा गाजी साहब विल बी प्रेजेंटिंग परदेश विच देश, एंड आई होप यू विल बी ज्वाइनिंग हिम. ही विल बी प्लेइंग वेरी नाइस ट्रैक्स, पंजाबी ट्रैक्स, पोटोहारी ट्रैक्स, कश्मीरी ट्रैक्स, सैफ अल मलूक, यू नेम इट. और मुझे उम्मीद है कि आप उनका प्रोग्राम भी इंजॉय करेंगे. मेरा और आपका साथ यहीं तक का था और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपने इंजॉय किया होगा. मैसेज टाइप हो रहा है तो मैं वेट कर लेता हूं. ये दुखी इंसानियत वाले लोग हैं, कहीं अगर मैंने इनका मैसेज ना पढ़ा तो कहीं ये खुद भी दुखी ना हो जाए. उफ भाई, ये वाली मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए. यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये गुनाह भी आप मेरे खाते में डाल रहे हैं. भाई ये गलत बात है, ये चीटिंग है यार. अपना रिकॉर्ड ठीक कर लो और मेरे खराब कर लो. नहीं भाई, आज के बाद मैं वो वाले लगाऊंगा जो आपको पसंद नहीं है. भाई आपने सुनने तो सुनो, लेकिन ये वाली बात मुझे क्यों बोल रहे हो.
स्पेशल गुड बाय फ्रॉम निकू। छा गया निकू तू यार, सेलिब्रिटी बन गया निकू। अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो, अल्लाह तुझे खुश रखे यार, बहुत खुशियां तुझे दे। और एक बंदे ने पहले ही अल्लाह हाफिज कर दिया है जी, बहुत जल्दी है इन्हें अल्लाह हाफिज करने की। चलो कोई गल नहीं, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह ही हाफिज है। नहीं भाई, ये वाली तारीफ नहीं चाहिए ना, ये जरा गौर से दोबारा पढ़ें ये वाला आप अपना मैसेज। हम सिर्फ आपकी वजह से, ये वाला जरा गौर से पढ़ें आप। यानी दुनिया में भी जल रहा हूं, आगे भी जलाने का प्लान है आपका। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और अगर अगर गलती से स्लिप ऑफ द टंग, क्योंकि मैं बगैर सोचे समझे बोल लेता हूं, आपको अपना समझता हूं इसीलिए बोलता हूं, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी, मेरी वजह से आपको दुख हुआ, आपकी शाम खराब हुई, तो मैं की करूं, दो कप चाय के और पी लें आप, नहीं मजाक कर, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना हरगिज नहीं था, मेरा मकसद था कुछ देर के लिए सही आपके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट बखेरने का। उम्मीद करता हूं किसी एक आद के चेहरे पर तो मुस्कुराहट जरूर आई होगी। दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। जिंदगी रही और ये सांसें इसी तरह चलती रहीं तो दोबारा मुलाकात होगी कल शाम को 4 बजे ड्राइव टाइम में। अ बिग शाउट आउट टू भाई आबिद फ्रॉम ब्रदर निकू। आबिद भाई, आपके लिए, आपको निकू भाई याद कर रहे हैं, ये इसी वजह से आप छींके मार रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मुझे फ्लू हो रहा है। आबिद फ्रॉम डार्नल, यार आई नो दैट यार, ये सारे मैसेज क्या करें यार। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ट्रैक, वेरी नाइस ट्रैक, अल्लाह हाफिज। और कौन सा मैसेज रीड करूं? ठीक है जी, अब यहां से जाते हैं, इजाजत, बातें हो गई बहुत, टाइम है बड़ा कम, 49:50 हो गए हैं भाई, अब मैं जा रहा हूं। अब मुझे रोकने की कोशिश, यार कलीम जल्दी से टाइप कर ले मेरा भाई, पहले 2 घंटे कहां था यार, अब जब जाने वाला हूं तो मैसेज पे मैसेज टाइप कर रहा है। 11 मिनट्स लेफ्ट, मुझे टाइम भी बता रहा है साथ में, और जिन्होंने अल्लाह हाफिज कर दिया है वो अभी इमोजीज भेज रहे हैं। यार ये कौन लोग हैं भाई, ये कौन लोग हैं सारे, माशाल्लाह बहुत अच्छे लिसनर हैं, जिनका मेरे साथ भी गुजारा नहीं है, मेरे बगैर भी गुजारा नहीं है। आई विल मिस यू टू कलीम भाई, और कल मुलाकात होगी अगर जिंदगी ने वफा की। जिंदगी बड़ी बेवफा है भाई, अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।

उम्मीद है कि दोस्तों की पसंद आया उसी। जितने भी दोस्तों का साथ दे रहे सब दोस्तों ने बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट स्पेशल दोस्त सूफी मुश्ताक साहब, राजा मुश्ताक साहब कलड़ा वाले, चैन जमान साहब और बाकी जितने दोस्त उन्होंने वास्ते सुनो, ये जरूर पसंद है।

उम्मीद है कि सर दोस्त गुरु साहब की पसंद आया सी जरूर, तो उन्होंने स्पैशली सलाम दिता सी बाबा सरवर रादरम वाले पहले शफीरी होने सन, तो उन्होंने स्पैशली उन्हें सलाम दिता सी गुरु साहब मेरी तरफों बाबा सरवर होना की। तो हूँ नैक्सट फिर ब्रेक आई जी सुनो

0: name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sain Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sain Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
9: Dil se dil ko milata, har rang, har awaz ko sajata. Aapka apna radio station. Dil se aapke saath.
13: Link FM Sheffield.

0: to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज्यादा अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक FM, हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ।
0: लिंक FM, योर नंबर वन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
3: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
2: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
3: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
4: Cook Studio, Season 15.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
8: On 96.7 FM, online, on smartphone and tablet, this is Link FM.

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: कुक स्टूडियो सीजन 15।

थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा सारे गाना चंगा लगे होना, सो कमेंट करके जरूर दस्यो कि लगा तुम गाँव से। याद ना भुल्यो ना चैनल सबसक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि होर बहुत सोहने सोहने गाने इस चैनल से आने वाले हैं।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेकअवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.